असंत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कलवट हृदय कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आए संत मलेच मल पक पाए असंत निंदक करे पा नानक नीच कह क्या मारे अमर जाना जो कुछ पावे सही परिकार

वारे गावन तुदन चेत गोपत लेख जानन लेख लेख धर्म बिचारे गावन तुदन ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदन इंदर इंदर आसन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुदन सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदन साध दीचारे गावन तुदन जति सती संतोखी गावन तुदन वीर करारे गावन तुदन पंडित पढ़न रखी सूर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माशु पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे

रहाउ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपतासह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया।

न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया। ऊडे ऊड आवै सै कुसा तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवण खलावै कवण चुगावै मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल साध बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा। सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्यावहो संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा।

गुण आख वखाणा। जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै है तुद जी से जन जुग मैं सुख वासी। से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता।

है। आप हाथ दय मुझे उबरे है, मरण काल का त्रास निवरे है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझो कर हो रक्षा। राख ले हो मोहे रख नहारे, साहेब संत सहाये प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दासुकंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

जछन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सैव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, घाट घाट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभव।

प्राचीन तन है पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पेन पेन तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केहे बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत पूज खान बहुरे राच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तातो काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मोहरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा।

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, ओथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए, तेरा छड जाहे। पौ जल बिखम असगाहौ, गुर सबदी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास, अमृत से खाहे। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो किरपाल, संभाले साहे साहे। बिरथा कुए न जाए, जे आवै तो दे आहे। सलोक महला पंजवां।

गुरु प्यारी साध संगत जी आप जी हुण कथा सरवण करो। कथा सरवण करोगे ज्ञानी लखविंदर सिंह जी खालसा। इस तरह ही आप जी श्रद्धा भावना सत्कार सहित बैठे रहना, एकाग्रता बना करके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

नानक होसी भी सच सोच सोच न हो वई जे सोची लख वार चुप चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बना पुरिया पार सहस सयान पा लख होहे ता एक ना चले नाल केव सचियारा होई है

जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नौ सिमराओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ नित आवै ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब थाई हुए सहाय, सब थाई हुए सहाय।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जयकार कीर्ति आखी है करते का होए बिचारो। तित कर गावो सोहिला सिवरो सृजनहारो। तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला। हों वारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार। तेरे दान कीमत ना पवै तिसदाते कवन समार। संबत साह लिखिया मिल कर पावो तेल। देव सजन असी सड़िया जो हो वै साहिब से मेल। घर घर हो पहुंचा सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन। रागा सा महला पहला। शे घर शे गुर शे उपदेश। गुर गुर एक वेश अनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए। सो कर राख वडाई तोय रहाओ। विश्वे चसियां कड़ियां पहरा। थिति वारी माहु हुआ सूरज एक रुत अनेक। नानक करते के केते वेश। रागतना श्री महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती। धूप मल्यान लो पवन चवरो करे। सगल बंदराए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वा जंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो। सहस मूर्त न नायक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद। गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए। तिसदा चानन सब मह चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए। जोत सुभावै सुवारती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो। आनंद न मोहे आही प्यासा। कृपा जल देहे नानक सारिंग कहो। होए जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर भव भरिया। मन साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ। साकत हर रस साधना जानिया। तन अंतर हो मैं कंडा है। ज्यो ज्यो चलह चुभ दुख पाव है। जमकाल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम सुमाने। दुख जन्म मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर। बहु सोभ खंड ब्रह मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। हर राख राख उड़ वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है। हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बिनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला। इहां कार चलो हर लाह। आगे बसन सुहेला। औद कटै दिन सो रहनारे। मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। ए संसार विकार संसे। मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पिया वह एहो रस कथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो हर गुरते मने बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे। बहर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिदाते।

गुर ए नमः, सत गुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ, कल कलेश तन माहि मिटावौ।

त्रासा प्रभु कै सिमरन पूरन आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहि सुमाए प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरह से तनवंते प्रभु को सिमरह से पतवंते प्रभु को सिमरह से जन परवान प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरह से बेमहताजे प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे प्रभु को सिमरह से सुखवासी प्रभु को सिमरह सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावै प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरह तिन अनद कनेरे प्रभु को सिमरह बसह हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभु कै सिमरन कारज पूरे प्रभु कै सिमरन कबहु न चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज सुमानी प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जिनको प्रभु मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख पंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महा प्यान दूत जम दल तह केवल नाम संग तेरे चल जय मुश्किल हुए अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पापर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिक न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जिह मार गयो जात केला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नामन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाई छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही अनिक बिघन जय आय श्रृंगार है हर का नाम तत्काल उदार है अनिक जोर जन मैं मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हौ मैला मल कबू न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साध कै संग जिह मार के गन जाहि न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जिह पैठै मां अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जाह पंत तेरा को न जानू हर का नाम तह नाल पछानू जय महाप्यान तप तुभ काम तय हर के नाम की तुम परछा।

नहीं हुए बहरी उसका विश्वास न हुए जिसकी वस्तु से आगे रखे प्रभु की आज्ञा मन माथे उसके चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक पांत माया के हित सर पर होत जान अनेक

निहिता को आत्मयावे की मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नान का पले लाई मिथ्या तान तान कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राह जोगन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्राल मिथ्या रंग संग माया पेखास्ता मिथ्या त्रु मोह विमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर पग साध की शरण नानक जप जब जीव है हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्प को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाल मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावह मिथ्या मन पर लोभ लुभावह मिथ्या तन्नी पर उपकारा मिथ्या बास लीत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहि सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरथी साकत की आर जा साच बिना कहूत सूचा बिरता नाम बिना तन अंध मुकावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाय मेघ बिना ज्यो खेती जाय गोविंद भजन बिन वृथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाउ नानक ताके बल बल जाओ रह तवर कछवर कमावत मनी प्रीत मुखो गंड लावत जन नहार प्रभु पर भी बाहर भेख न काहू पी अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन में मरे जिसके अंतर बस है निरंकार जिसकी सीख तरह संसार जो तुम पानी तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पह माने या पह या पाप करत नबेरा किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा उपाव से अनुप सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस ले लड़ लाए थान तनंत रहा सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहं मेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मनवाहे जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद ग्रे

की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पे कह बिस्मार जे प्रसाद बुल है अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्याग और कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तुम प्रगट संसार इस प्रभु को मूर न मनो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तुता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साथ रे मन मेरे तू तास्यो रात जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सुनाओ आप गावाए सुहर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम हुए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपहु कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लग है हर नाथ नान किन कह कछु नहात श्लोक अगम गात पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता हुए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथाष्टपदी साध के संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटै विमान साध के संग प्रगटै सुज्ञान साध के संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा प्रभ माही समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस कुंचा साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतु तावे साध संग अस्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग

वाहिगुरु। साधु संगना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साधु संगना ही हों ताप, साधु संग तजै सव्याप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साधक संग न कबहू तावै, साधक संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त गोचर लह, साधु कै संग अजर सह। साधक संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध

साधु कै कुर्बान, साध के संग सब कुल उधार है, साध संग साजन बीज कुटम निस्तार है, साधु कै संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे, साध संग धर्म राय कर सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म, साध के संग नहीं कचकाल, दर्शन भेट तुहोत निहार, साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला, साध संग बिछुरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरै साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मंति बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगे ब्रह्म मीठा, साधु कै संग कट कर डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पिटे संजोग, साध की महिमा वेद न जान है, जीता सुने तेता बखियान है, साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, सलो मन साचा मुख साचा सोए, अवर न फेकै कुछ बिन कोए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्यमान, जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, जो बसुदा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी कै

सदाय के कंकार कई कोट की ने बहुपात प्रभते हुए ब्रह्मा ही समात ताकांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तुम प्रगास कई कोट तत् के बेते सुदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पैसा सत ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह सुमावे अपने जन को साथ

नान तिस बलिहार नै जल तल महियर सोई अष्टपदी करण करावन करने जो जो तिस भाव है सोई हो किन मैं ताप तापन हारा अंत नहीं किच पार अवारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनिक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभावै मानु कत पावै प्रभावै ता पात्र त्रावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण भाखै प्रभावै ता पतित उधारै आप करै अपन बिचारै दुहां सिरियां काप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर ना आवै कहो मानुक ते क्या हुए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ होए तां सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अनजानत विखिया मह रचै जे जानता अपना बचै परमी भूला दह जिस तावै निमख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन ना मिले किन मैं नीच कीट कौराज पार ब्रह्म गरीब नवा जाका दृष्ट कछू न आवै इस तत्काल दा दिस प्रगटावै जाकू अपनी करै बख्शीश ताका लिखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही सहात करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई फुन थियो कबू ऊच नीच में बसै कबू सोग हरख रंग हसै कबू निंद चिंद व्यवहार कबू ऊप आकाश प्याल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला वनहार कबू निरत करै बोपात कबू सोए रहे दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो त्रवार कबू हुए बह बड़ राजा कबू पेखारी नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवै कबू भला भला कहावै क्यों प्रभरा कह तिवही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबू हो पंडित करे बज्ञान कबू मोन धारी लावै ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिर साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हुए जियान कि जोन पर मैं परमिया नाना रूप च स्वागी दिखावै जो प्रभावै तिवै नचावै जो तिस भावै सोई होए नानक दूजा वर न कोए कबू सा संगत पावै उस स्थान ते बौर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रति करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान श्लोक सुखी बसै मस्किनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमान सो मूर्खन सो नरक पाती हो स्वान जो जानै मैं जो गुणवंत सो होत विष्टा का जंत आप सुखो करवंत कहावै जन मरै बो जोन प्रभावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्खन दा ज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी पसावै नानक किया मुक्ता कै सुख पावै धनवंता होए कर गरबावै तृण समान कर संग न जावै बोलस कर मानुख ऊपर करियास पल भीतरता का होए बिना सब ते आप जानै बलवंत किन मै होए जाए पसमंत किसै न बतै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगै परवान कोट कर्म करै हो तारे श्रम पावै सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर अवतार अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेंजा का मन हुए कहु नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संगवाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे
सहस कटेला कोट तावे, तृप्त न आवे माया पाचे पावे, अनिक भोग भिक्षा की करे न तृप्तावे कब कम रह, बिना संतोख नहीं को राजय, सुपन मनोरथ वृत्ति सब काजय, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए, करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा हुए, आपे आप आप रव सोए, जो किसकी नुसु अपने रंग, सब ते दूर सबू कह संग, बुझे देखे करे विवेक, आपहे कापहे अनेक, मरण बिन से आवे न जाए, नानक सद ही रहा समाय, आप उपदेश समझे आप, आपे रचिया सब के साथ, आप किनु अपन विस्तार, सब कछ उसका करने हार, उसते पिन कहो किछ हुए, तांत नंतर एक कैस हुए, अपने चलता करने हार, कौतुक करे रंग आप हार, मन में अमन अपने माही, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वखियानी, सच सच सच सब किन्ना कूट मध्य किने बिरले चीना, भला भला भला तिर रूप सुंदर पार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कट सुनी श्रवण बखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत सरण जो जन परै, सो जने उतरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार स्पदी, संत कह दुख नार जा कटे, संत कह दुखन जम तेनी छुटे, संत कह दुखन सुख सब जाए, संत कह दुख नरक में पाए, संत कह दुखन मत हुए मिलीन, संत कह दुखन शोभा ते हीन, संत के हथि को रखे न कोई, संत कह दुखन तान भ्रष्ट हुए, संत कृपाल कृपा जी करे, नानक संत संग निंदक भीतर है, संत के दुखन ते मुख भवै, संतन कह दुखन काग ज्यो लवै, संतन कह दुखन सर्ब ज्योन पाए, संत कह दुखन त्रिग ज्योन किरमाए, संतन कह दुखन तृष्णा में जले, संत कह दुखन सब कुछ चले, संत कह दुखन थे सब जाए, संत कह दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का ताव को नाही, नानक संत भावे तो पीरत पाई, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक किन टिकन न पाई, संत का निंदक मात यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखी आरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दुख मैं दुख, नानक संत पावे तो उसका भी होए मोग, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित्र, संत के दुखी को डान ला गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख न सुख तिटर है, संत के दुखी को ना ही ठाव, नान संत भावे तन ले मिलाए, संत का दुखी आज बीच ते टूटे, संत का दुखी कित काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ बाई है, संत का दुखी अंतर के थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किच नाही, अपन भी जापे ही काही, संत के दुखी कवर न रखन हार, नान संत भावे तन ले उबार, संत का दुखी यों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पाव किंद नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटे केला, ज्यों बुआड़ तिलके तमाए दुहेला, संत का दुखी धर्म थे रह, संत का दुखी सदमिथिया कह, कीर्तन इंद का तुर ही पाया, नानक ज्योत भावे सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहताई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की बुझे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्ट कोए, जैसा भाव है तैसा कोई हुए, भया कीर्तन मिटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब काट तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तुत करो दिन रात, हो सास गिरा सब कछ वर्त तिसका किया, जैसा करे तैसा खुथिया, अपना खेला करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे अपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन शेष लोक, तजो से आन सुरजन हो, सिमर हो हर हर राय,
एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम हो जाए अष्टपति। मानु की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रह गाय बर न तृष्ण लग गए आए। मारे रखे कुआ मानु कह किस नाई आत, इसका हुकुम भूसु कोई, जिसका नाम रखंठ परोई। सिमर सिमर सिमर प्रभु सोई, नानक विघ्न लागे कोई। उस्तत मन में कर निरंकार, कर्मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पेग ठाकुर का रंग, सत्संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर गय नानकू जिल मत्ता। बट भागी ते जन जग माहे, सदा सदार के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, सेतन मंत गनी संसार। मंथन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, तुत की सूझी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपना आप सुझे, जिसकी जानो तृष्णा बुझे। सात संग हर हर जस कह, सर्व रोग त्योहार जन रह। तन दिन कीर्तन केवल वकियान, ग्रिष्ट में सोई निर्वाण। एक ऊपर जी जन की आशा, तिसकी कटिए जम की पासा। पार ब्रह्म की जिस मन फूक, नानक तिसे न लागे दूख। जिसको हर ब्रह्मन चित आवे, सो संग सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवको किसते डरे। जैसा साथ ऐसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत् सब बुझिया। जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सुखम सोई असूल। नै कि जन्मे नै किच मरे, अपन चलता भी करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल में आपन, कि जुग त्रिजता पुथाप। अविनाशी नाही किच खंड, धारण धारे हो ब्रह्मांड। अल खपे पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप। जिन प्रभु जाता सु सुभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत। प्रभु के सेवक सगल उदाहरण, प्रभु के सेवक दुख विसारण। आपे मेले कृपाल, गुरु का सब जपै निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करै बट पागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख उत्तम करमान। जो किछ करे सुप्रभ कै रंग, सदा सदा बसे हर संग। सह सुभाए हुए सो हुए, करने हर पछाने सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस त्यो विचित समाये समाये हुए, सुख निदान उनु बने आया। उसको आप दिनो मान, नानक प्रभु जन एक को जान। श्लोक सर्व कला भरपूर, प्राप्तता जाननहार। जा कै सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार। अष्टपति टूटी गाढ़ हार, गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस्ते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जा, पवनासी प्रभ आपे आप। अपन किया कछु ना होए, जे सो प्राणी लुचै कोए। तिस बिना ही तेरे किछ काम, कथ नानक जप एक हर नाम। रूपवंत हुए नाही वो है, प्रभु की जो सगल कट सो है। धनवंता हुए क्या को गर्व है, क्या सब किस तिसका दिया दर्व है। हत सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कहता वे। जे को हुए पह दातार, तिस ते नहार जाने गावा। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रो, नानक सोजन सदा अरो। ज्यो मंदिर को थमे थमन, त्यों गुरु का शब्द मने स्तमन। ज्यो पाखा नाव चढ़त रह, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है। ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन हुए विगास। ज्यो महाउद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे। तिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर काहे बिल लाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये। दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसे चथार। जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरया जान। कौन बसताई तेरे संग, लपट रहे रस लोभी पतंग। राम नाम जब फिरते माही, नानक पद सिद्धि कर जाहि। जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तजब मान लिहो मन मोल, राम नाम हृदय में तो। लाद की संत संचाल, अवर त्या बिखिया जंजाल। तन तन कै सब कोए, मुकुजल हर दर कै सोए। ए व्यापार विरला व्यापार है, नानक था कै सद बलिहार है। चरण साध के तुय तुय पियो, वर प्रसाद को अपना जियो। साध की दूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान।
साध सेवा वड भागी पाई है, साध संग हर कीर्तन गाई है, अनिक बिगंते साधु राख है, हर गुण गाय अमृत रस चख है, ओट गई संत दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवता दार, सर्व निदान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाई, सब किस कौ करने जो तिस बिन दूसर हुआ न हो, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब थ्यूच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सूजन निर्मल थिया, जा कै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ जीत, भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जा कै हृदय को हुए, सच करनी सचदा की रहत, सच हृदय सत मुख हैत, सची दृढ़ सचा आकार, सच वर्त है सचा पासार, पार ब्रंजन सच कर जाता, नानक सूजन सच सुमाता, सुलोक रूप न रेख न रंग किच, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, तिसै बजाए नानका, जिस हुवै सुप्रसन्न अष्टपदी, अविनाशी ब्रह्मन में राख, मानु की तू प्रीति आग, तिसते प्रणा ही किच कोय, सर्व निरंतर एक कोश होए, आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद, सा तेरे की चरणी पाओ, नानक है मन हुवन राहु, मन सब पूर्ण सरना जोग, जो कृपाया सोई हो, हरन भरन जाका नेत्र होर, तिसका मंत्र न जाने होर, अनदरू मंगल सजा कै, सर्व तोप सुनी है करता कै, राज में राज योग में जोगी, ताप मैं तपीसर गृष्ठ मैं भोगी, त्याय त्य भगत है सुख पाया, नान त्रिपुर का किनंत न पाया, जा की लीला की मित नाई, सगल देव हारे वगाहे, पिता के जन्म के जाने पूत, सगल पुरोही अपने सुसमुत ज्ञान, सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जनदास नाम त्या वैसे, त्यो गुण मैं जाको परमाए, जन्म मरे फिर आवै जायो, जिन तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे के रंग, नाना बिट किन्नो विस्तार, प्रभ मनासी एक अंकार, नाना चलत करे किन माहे, पूरे अपूर्ण सब ठाए, नाना बिट कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर जिसके सब जिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जा का सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरुष सब माहे सुमाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नान गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत थे जन जाके हृदय प्रवेश, सत नृत बूझे जे कोए, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिरसो करने हार, वर्ण भूत करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योति पावे सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्मार, जिन बुझिया तिसाया स्वाद, प्रभ कै रंग राजन रही, गुर कै वचन पदार्थ लही, वे दाते दुखा टनहार, जा कै संग तरह संसार, जन का सेवक सो वडभागी, जन कै संग एक लेव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच अष्टपदी, चरण सत सत प्रसन्हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत आवनहार, आप सत सत सवधारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ भक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार को सत सब हुए,
नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा के हृदय विश्वास प्रभे आया तत् ज्ञान तस मन प्रगटाया ऐ ते निर्भउ हुए बसाना जिस ते उपजै तिस माहि समाना बस्त माहिली बस्त गड़ाई ताको भिन्न न कहना जाई बूझै बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जानै संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धारै नानक सो सेवक साथ साथ सुमारै अपने जन का परदा ढाकै अपने सेवक की सर पर रखै अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रखै ताकि गत मित कोई न लाखै प्रभ के सेवक को न पहुँचै प्रभ के सेवक पूछते उचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया निकी गिरी मैं कल रखै भस्म करै लश्कर कोट लाखै जिसका सास न काट ताप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन करत भात तिसके करत बिरते जात मारन राखे अवर न कोए सर्व जिया का रख सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रबल कविडानी बारंबार बार प्रभु जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किच अवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम राजो जंत्र बताने मंत्र नाम में नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कौ नानक जन कै सुध काम बोलो जा जे बा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करे भगत आत्म कह चाये प्रभ अपने शिव रह समाये जो हुआ होत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह के न जानू आठ पैर प्रभ से हजूरे कौ नान से जन पूरे मन मेरे तिनकी उठले हे मन तने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पिछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पा मिटावे अवर सियानप सगली चाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान हो भी तेरा नानक तिस जन के पूछो सद पैरा सलोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उतरै नानक हर गुण गाओ उस्तपदी सतगुर सिक्की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिक्के बंधन काटै गुर का सिख विकार थे हटै सतगुर सिक्को नाम धन दे गुर का सिख वड भागी सतगुर सिक्का हलत पल सुवारै नानक सतगुर सिक्को जी नाल सुमारै गुर कै ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कच न जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै मन बिचै सतगुर कै पास तिस सेवक कै कार्ज रास सेवा करत तिस सेवा करत हुए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसाप करे नानक सो सेव गुर की मत ले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक कहे आप नहीं कछ परम सहस्यान पलया न जाइए नानक ऐसा गुरबिड भागी पाइए सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण कथ निर्मल रीत पेटत संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गह गवे सुनकर बचन करन आघानी मन संतोख आत्म पति आने
पूरा गुरख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लय मिलाए जे बाय कुस्तत अनेक सतपुर पूर्ण बवे काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनिक भगत बंदन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरह सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रोज अपने इहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सोहो उस पुर का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक हो दे मोह माया के संग न लेप मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक परगासी नानक परम दुख तहते नासी तप्त माहि ठाड़ वरताई अनंत भया दुख न टे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे भव चुका निर्भव हुए बसे सगल व्याध मन ते खै नसे जिसका साथिन कृपा तारी साध संग जपना मरारी थित पाई चुके परम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवण निर्गुणाव सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली वोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनिक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चाल हर हर नाम कमावना नानक तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमरना माधार और पाप समीत विसारो चरण कमरिद में उतारो करण कारण सो प्रभ सम्रथ दृढ़ कर गहो नाम हर वाते धन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मन ते कास रखो मन वाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट टूटता वै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित वाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत ये शोभा को करे भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनिक पावी रोग न जाए रोग मिटा रव कद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जब नानक दर गए प्रवान मन प्रभु दो हर कह नाय दय जिस तावता बैठाए ताको बिघन

सना। सुत मीत कुटम्बर बन तैन ते कहो तुम कवन सनाता, राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार। असहस्ती रथ सुवारी झूठा डम झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे न बेगाना। नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू ले आने भगत बिना बो डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के किल बिक जाहे। आप जपो अबरा नाम जपाओ, सुनत कैत रहत गत भाओ, सार पूसत हर को नाओ सह सुभाए। नान गुन गाओ त्रिउत्र समैल, बिनस जाय हो मैं विख फैल। ओहे चिंत बसै सुख नाल, सास ग्रह सरनाम संभाल। छाड़ सियान सगली मना, छाड़ सियान सगली मना, सास संग पावे सच तना। हर पूंजी संच करो बिहार, यहाँ सुख दर गह जयकार। सर्व निरंतर एको देख कौ नानक, जाके मस्तक लेख एको जप एको साला, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूरे हो प्रभाप। अनेक विस्तार एक दे भय एक आराध प्राचत गए, मंतन अंतर एक प्रभराता। गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक पिर्थ पिर्थ प्रभ आया। प्रय तो शरणाए नानक की प्रभेंती, अपनी भक्ति लाए पति जाच के जन जाचे प्रदान। कर कृपा देवो हर नाम, साजना की मांगो तूर। पार ब्रह्मिर श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो। सास सास प्रभ तुम त्याहो, चरण कमल सिंह लागे प्रीत। भक्त करो प्रभ के नित नीते को टेको आधार। नानक मांगे नाम प्रभ सार, प्रभ की दृष्ट महा सुख होए। हर रस पावे बिरला कोए, जिन चाख्या से जन त्रिपताने। पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सो भार परे प्रेम रस रंग। उपजै चाओ साध कै संग, परे शरणान सब त्याग। अंतर प्रगासन दिल निविलाग, बट भागी जपिया प्रभ सोए। नानक नाम रते सुख होए, सेव की मनसा पूरी भई। सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होए दयाल। सेव कीनु सदा निहाल, बंधन काढ़ मुक जन पया। जन मरण रूप भ्रम गया, इच पुन्नी श्रद्धा सब पूरी। रब रया सत्संग हजूरी, जिसका सत लिया मिलाए। नानक भक्ति नाम समाए, सोख्य बिसरै जी काल ना पान। सोख्य बिसरै जी किया जान, सोख्य बिसरै जिन सब किस दिया। सोख्य बिसरै जी जीवन जिया, सोख्य बिसरै जी गण मैं राख। गुर प्रसाद को बिरला लाख, सोख्य बिसरै जी विकति काट। जन्म जन्म का टूटा गाट, गुर पूरा तत् है बुझाया। प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो ये काम। मान त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो। आप जपो अवरै नाम जपावो, भगत पाए तरिय संसार। बिन भगति तन होसी चार, सर्व कल्याण सुख नित नाम। बूढ़ जात पाए विश्राम, सगल दुख का होत नास। नानक नाम जपो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रचाओ। मन तन अंतर ही सुहाओ, नित्र उपेक्षर सुख होए। मन भिक्षा सात चरण तोय, भगत जना के मन तर रंग। बिरला को पावे संग, एक बदी जय कर मया। गुरु प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए। नानक रहा सर्व समाए, प्रभु सन दीन दयाल। भगत वचन सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल। सर्व कटा करत प्रतपाल, आद पुर कारण करतार। भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो हुए पुनीत। भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीचे जान। नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व वैकुंड मुक्त मुख पाए। एक निम कर के गुण गाए, अनिक राज भोग बढ़ियाई। हर के नाम की कथा मन पाई, वो भोजन का प्रसंगीत। रसन जपती हर हर नीत, भली सुकरणी सुभा तनवंत। हृदय बसे पूर्ण गुरु मंत, साह संग प्रभ देह निवास। सर्व सुख नानक प्रगास, लोक सर्वगुण निर्गुण निरंकार। सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही। फिर जा पष्टपदी, जब कारु कछ न दृष्टेता। आपन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समात। तब बैर विरोध के संक मात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जाप। तब हर सो कहो कि सैबे आपत, जब आपन आप पार ब्रह्म। तब वो का सोबत परम, आपन खेला वर्ती जा। नान करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी। तब बंद मुक्त कहो किसको गनी, जब एक रगम पार। तब नर सुर कहो कौन उतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुभाई। तब शिव सकत कहो कित ठाई, जब आप है आप अपनी ज्योतर है। तब कवन निडर कवन कत डर है, अपन चलता आप करने हार। नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी।

सुखा प्रनाशन चाहे जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किसोए जब अभिगत गुचर प्रभिका तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा जब नाथ निरंजन गुजर गाते जब नाथ निरंजन गुचर अगाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाते अपना पापी चर जा नानक अपन रूप पापी ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तूता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चित्र लगत कौकीश जय जो स्वरूपी जो संग समावै तय किसै भू कवन तृप्तावै करन करावन करनेहार नानक करते का नहीं समार जब अपनी शुभ अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कलाया पै प्रवी तय वीर देव कहा कूचीन जब अपना पापुरता है तू सगन सगन कहा विचार है जय अपन ऊंच अपन आप नीरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अचेद भेद समाया ऊहा किसे व्याप्त माया पुष्पु अपहया देश त्यो गुण का ना ही प्रवेश जय कहे के भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपना पाप तिहारा तय कौन कथे कौन सुन नहारा बहु बेअंत ऊच ते उच्चा नानक पुष्पु अपह पहुंचा जय अप्रचु प्रपंचकार त्यो गुण मैं किन्नो विस्तार पाप हुनते भई कहावत को नरको सुर्ग बंचावत हाल जाल माया जंजाल हो मैं मोह भरम पै भार सू दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान अपन खेल आप कर देखे स्वय खेल संकोच है तो नानक कह जय विगत भगत आप जय पसर पासार संत प्रताप दूपा का पे धनी उनकी शोभा नुह बनी आप कौत कर आनंद चू जाप रस भोग निर्जोग जिस भाव है तिस आप नाय दाव है जिस भाव है तिस खेल खिलाव है बेशुमार था गंत अतुल ज्यो बुलाव हो त्यो नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तनहा नानक को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार अपह का विस्तार जत भावे तुम सृष्ट पाए अपने भाणे ले समाय तुम ते भिन्न नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत पुरोए जाको प्रभु जी आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् कवेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सबता कहा दीन दयाल नाथ को नाथ जिस रख है तिस को न मारे सो मुआ जिस मनो विसार है तिस तजवर कहा को जाए सब श्रीख निरंजन राय जी की जुग जा कै सब हाथ अंतर बाहर चन साग गुण दान बेअंत पार नानक दास दा बिरहार पूरन पूर रहे दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याह प्रतपाले जीन पपा जो जुर चुस दिस एहतियात जिस भाव है तिसलय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जान्या जन लागा रे कह नाए तिसकी आस न बिरथि जाए सेवक को सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जा कह मन बसिया निरंकार बंधन तोर भय निर्वैर अंधन पूजै गुर के पैरे लोक सुखिए परलोक सुहेले नान घर प्रभु आपह मेले साह संगल करो आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण कह सुहाओ आठ पहर प्रभु को नीरा मिटै ज्ञान बिन सह अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन छे नानक फल पावो हलत फल दोले सुवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे तिसाच परिखिया मंत्र नाम जपो लिबलाए दू दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दर गहने बैखे तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवै जाहे तिस्ते दूर कहा को जाए उबरे रख नहार त्याए निर्भउ जपै सगल भउ मिटै
प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिसनाहि दूख, नाम जपत मन होवत सूख। चिंता जाय मिटै अहंकार, तिस जन कौ कोई न पहुँचनहार। सिर उपर ठाडा गुरु सूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमर जाकी दृष्ट, दर्शन पेख दुदर श्रिष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सुहोत निहाल, ताके निकट नयावत काल। अमर भय अमरा पद पाया, सत्संग नानक हर ध्याया श्लोक। ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संगंत्र प्रवडीटा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सुगल समग्री एक कट माही, हनिक रंग नाना दृष्टाही। नौ निदमृत प्रभु का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाधन हत्या नाथ, कह न जाई चज विस्मा। तिन देख्या जिसाब दिखाए, नानक ते जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। तरण माही आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माही, चार कुंट दै दिशे सवाही। तिस्ते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद प्राण सिमृत मैं देख, सस्य सूर्य नक्षत्र मैं एक। बाणी प्रभु की सबको बोले, आप डोल न कबहू डोले। सर्व कला कर खेल खेल, मोर न पाइय गुने मोल। सर्व ज्योत में जा की जो, तार्यो स्वामी उत्पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन में हो विसास। संत जना का पेखण सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुनै सुबचन, सर्वव्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिस की रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो हो सोई सुख मानै, करण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख समोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावै ता करे विस्तार, तिस भावै ता एक अंकार। अनि कला लखी न जाए, जिस भावै तिसलै मिलाए। कवन निकट कवन कहियै दूर, आपे आपा भरपूर। अंतर गज साफ जनाए, नानक तिजन आ बुझाए। सरभूता वरतारा, सर्व नैना पेखन हारा। सगल समगरी जाका तनापन, जसा पी सुनावन। जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी की नीमाया। सब कह मद लिखतु रह, जो कुछ कहना सु आपे कह। आज्ञा वै आज्ञा जाए, नानक जा पावै ता ले समाइश। ते होए सुना ही बुरा उरे, कहो किने कछ करा। आप भला कर तू तत निकी, आपे जाने अपने जी की। आप साज धारी सब साच, उत्पोत अपन संग्राच। ताकि गद मित कही न जाए, दूसर होए ता सोची पाए। तिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक हो जान। जो जाने ते सदा सुख होया, मिलाए ले प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुख जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, इस प्रसाद सब जगत राया। जन आवन का है सुआउ, जन कै संचित आवै नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक।

अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित्या गोतरंग संत जना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो सात संग अगण सागर तर हो हर तन के भर लिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहजानंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदहारो जीव गुण गोविंद।

दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी कह दार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप करे लोक कह निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जा कै मन लागा हर रंग, जय जय शब्द नाद वाजै, सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजै, प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उतरे तिन कै साथे, शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभा मिलाए, मिट गए बैर भय सबरे, नम्रत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेव की सेव, आल जिंजाल बेकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद या प्रभतारी, नानक निभ ही खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सुहोत निदान, सर्व इच्छा था कि पूर्ण होए, प्रधान पुरु प्रगट सब लोए, सब त्यूज पाए स्थान, बौर न हो वैण जान, हर तन काट चलै जन सोए, नानक किसे प्राप्त होए, खेव शांत रिद नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध, विद्या तप चोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मत सगल तिवदास, सुंदर चतुर तत् काव्यता, समदर्शी एक दृष्टिता, फल किस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम वचन मन सुने, हो निदान जपै मन कोए, सब जुग मैं ताकी गत होय, गुण निदान गुण गोविंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद वकानी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध सासंग मिटै, संत कृपा ते जमते छुटै, जा कै मस्त कर्म प्रपाए, सासर नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रजीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ दे तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहि सुमानी, दुख रोग बिन से पै

हे गुण नाम सुखमणि सब त्यू चुकाकी शोभा बनी नानक हे गुण नाम सुखमणि सुखमणि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का।

एक ओंकार सतना कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस सियाणपां लख होहे ता इक ना चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेखो दुख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बखशीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कह ना कोए गावै को ताण हुवै किसै पाण गावै को दात जाणै निसाण गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगां जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए भाखिया भाउ अपार आख है मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक इवै जानिया सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निधान गावी है सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी जे ती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा ना उर खाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोए न सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनाए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनाए धरत धवल आकाश सुनाए दीपलो पाताल सुनाए पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनाए दुख पाप का नाश सुनाए ईसर बर्मा इंद सुनाए मुख साला हनुमंद सुनाए जुग जुगत तन भेद सुनाए सास सिमरत वेद
नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नाश, सुनाए सत संतोख ज्ञान, सुनाए अठ सठ का इस्नान, सुनाए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनाए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नाश, सुनाए सारा गुणा की गाह, सुनाए सेख पीर पातशाह, सुनाए अंधे पावे राह, सुनाए हाथ होवे असगाह, नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नाश, मने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागद कलम न लिखण हार, मने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मनै सुरत होवै मन बुद्ध, मनै सगल पवन की सुध, मनै मोहे चोटा ना खाए, मनै जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मनै मार्ग ठाक न पाए, मनै पत स्यों प्रगट जाए, मनै मग न चले पंथ, मनै धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मनै पावह मुख दुआर, मनै परवारै साधार, मनै तरै तारे गुर सिख, मनै नानक पावह है ना भिखु, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान, पंचा सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कहै करै विचार, करते कै करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तबलै उपर केता पार, धरती होर परै होर होर, तिस ते पार तलै कवण जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया वुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवाल हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख ताप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मनो राहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाख सार, असंख मोन लेवलाए तार, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फेराहे, असंख मलेश मल पाख खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच कहै विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, बिन नावै नाही को थाओ,
कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भरियै हाथ पैर तन देहे, पानी धोता है उत्तर सोखे। मूत पलिती कपड़ होए, दे साबून लइयै ओह धोए। भरियै मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। उन्नी पापी आखण नाही, कर कर करना लिख लै जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। सुनया मन्या मान कीता पाओ, अंतर गत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, वैण गुण कीते भगत ना होए। सुअस्त आथ बाणी ब्रह्माओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवण सो वेला वखत कवण, कवण थित कवण वार। कवण से रुति माह कवण, जित हुआ आकार। वेल ना पाया पंडती, जे होवै लेख पुराण। वखत ना पायो का दिया, जे लिखन लेख कुराण। थित वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई। जा करता सर ठीकौ साजे, आपे जाने सोई। केव कर आखा केव सालाही, क्यों वरने केव जाना। नानक आखण सब को आखै, एक दू एक सियाणा। वड़ा साहिब वड़ी नाई, कीता जाका होवै नानक। जे को आपौ जाणै, अगै गया ना सोहै। पाताला पाताल लख, आगासा आगास। ओड़क ओड़क पाल, थके वेद कहन एक वात। सहस अठारह कहन कतेबा, असलो एक तात। लिखा होए ता लिखी है, लिखै होए विनाश। नानक वड्डा आखी है, आपे जाने आप। सालाही सालाहे, एति सुरत ना पाइया। नदियां अतैवाह पवै, समुंद ना जानिय है। समुंद साह सुलतान, गिरहा सेती माल तन। कीड़ी तुल ना होवनी, जे तिस मन होना विसरा है। अंत ना सिफती कहण ना अंत, अंत ना करण देण ना अंत। अंत ना वेखण सुनण ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत। अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार। अंत कारण के ते बिल लाहे, ताके अंत ना पाए जाहे। एहो अंत ना जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। ए वड ऊंचा होवै कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जे वड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना कमाए। केते मंगा है जोध अपार, केते आ गणत नहीं विचार। केते खप तुटा है बेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे, केते आ दुख भूख साद मारो। ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी पाणै होए। होर आख ना सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए। ओह जाणै जेतिया मोहे खाए। आपे जाने आपे दे, आख है से पे के ई के। जिसनो बख से सिफत सला, नानक पात साही पात साहु। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार। अमुल आवह अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे। अमूल धर्म अमूल दीबाण, अमूल तुल अमूल परवान। अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल कर्म अमूल फुरमान। अमूलो अमूल आखिया न जाए, आख आख रहे लेव लाए। आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करह वख्याण। आख है बर में आख है इंद, आख है गोपीता गोविंद। आख है ईश्वर आख है सिद्ध, आख है केते कीते बुद्ध। आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव।
केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे हे ता आख ना सक है के ही के जे वड भावै ते वड होए नानक जाने साचा सोए जे को आख है बोल वे गाड़ ता लिखी है सिर गावारा गावार सो दर कीहा सो घर कीहा जित बहै सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वावण हारी किते राग परिस्यो कहियन किते गावण हारी गावै तुहनो पौण पाणी बैसंत्र गावै राजा धर्म दुआरी गावै चित गुप्त लिख जाण है लिख लिख धर्म विचारी गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारी गावह इंद इंद सुन बैठे देवतया दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा माश पायाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गावै ज्योत महाबल सूरा गावै खाणी चारी गावै खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तहारी सही तुदनो गावै है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जेव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चलावै है लिखे आवै भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तेस भावै तिव चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ऊना नदर न आवै बहुता एहो विडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बहु लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार
तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निसान, कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाट घड़िया रूप रंग के वेस, केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेस, केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खाणी, केतिया बाणी, केते पात निरिंद, केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कूड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप, ताकिया गल्लां कथिया ना जाए, जे को कहे पिछै पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरह न ठगे जाए, जिनकै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करै आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत ना अंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पहारा धीरज सुनिहार, आहरण मत वेद हथियार, पाओ खला अग्न तपताओ, भांडा पाओ अमृत ते तटाल, कड़ी है शब्द सच।

जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग आततंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अश्री छंद, आजय आलाय अपहय अभय अभू अजू अनास आकाश, अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल, अलेख अपेख अनाम अकाम, अगा अटहा अनाथे प्रमाथे, अजूनी अमूनी, ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे, अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे, भुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे समस्तु निवासे, नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विभूते, सदा सच्चिदानंद सत्रं प्रणासी, क्रीमुल कुनिंदा समस्तु निवासी, अजायब विभूते गजायब गनिमे, हरियं करियं करीमुल रहिमे, चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते, सुयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विभूते, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते, स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें त्व प्रसाद सवैये, श्रावक सुध समूह सिधान के, देख फिरे ओ कर जोग जति के, सूर सुरार दन सुध सोधा देख, संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे ओ मत, को न देखी अत प्राण पति के, श्री भगवान की पाई कृपा हूं के, एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सुवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पाउन के गौन को जात निवारे, भारी पूजान के भूप भली बेद, न्यावत शीस न जात बिचारे, इते पहे तो कहा पहे भूपत, अंत काओ नांगे ही पाए पधारे, जीत फिरे सब देश दिसान को, बांजत टोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही हाय राज हजारे, पूत पवेख पवान के पूपत, कौन गन नहीं जात बिचारे, श्री पात श्री भगवान भजे बिन, अंत कौ अंत के ताम सिधारे, तीर्थ नान दया दम दान, सो संयम नेम अनेक बसेख है, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान कपेख है, पौन आहार जति जात तार, सबै सो विचार हजार क देखै, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक न लेखै, सुध सिपाह दुरंत दुबाह, सो साज सना दुर्जान दलेंगे, भारी गुमान भरे मन में, कर पर्वत पंख हले न हलेंगे, तोर अरीर मरूर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे, श्री पत श्री भगवान कृपा बिन, त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर अपार बड़े बरियार, अब चार सार की तार पछैया, तोरत देस मलिंद मवासन, माथे गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान को तोड़न हार, सुबात नहीं चक चार लवैया, साहिब श्री सब को सिर नायक, जाचक अनेक सो एक देवैया, दानव देव फनिंदन साचर, भूत पवेख पवान जपेंगे, जीव जिते जल मैं थल मैं, पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन, पापन के बहुपुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरै जग, सत्र सबै अवलोक चपेंगे, मानव इंद्र गजेंद्र।

रा तप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट इस नानक जादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फासे जम फास परेंगे। जे नर श्री पत के प्रस है पाग ते नर फिर न देह धरेंगे। कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बख ध्यान लगायो। नहत फिर लिये सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवायो। बास पियो बिख्यान सो बैठ कह ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर आवाची दिशा मैं काहू पशा को सीस निवायो। को बुतान को पूजत

गहे तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुरु तब पाया, सहज सेती मन वजियां वादाइयां, राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। शब्दोता गावहो हरि केरा मन जिने वसाया, कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सुवारना, सब ना कला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है। जस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कन्हेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुरबान कीता गुरु विटहाओ जिस दियां ए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो हो शब्द तरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तहरिया। पंच दूत तुद वास कीते काल कंट कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तय सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजा हो क्या करे वेचारिया। तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा।

ना कीचै जिते अंत पछोताइयै। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। आगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा, अपना आप तू जान है। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाण आए, आख है ता वेख है सब तू है। जिन जगत उपाया, कहे नानक तू सदा आगम है, तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए, एक वेख पर सुन आया, लाभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा, तेन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता हां केरी, बेखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार, ताज कृष्णा बहुत नाही बोलना। खन्ने आहो तिखी वाल हो निकी, एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर वासना समाणी। कहे नानक चाल भगता जुग जुग निराली, ज्यों तू चला है तिव चल है स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए तिव चल जिना मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम लाए, से हर हर सदा त्यावहे, जिसनो कथा सुनाए अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावहे। कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों पावै तिवै चलावहे, एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहेला, सतगुरु सुनाया। एहो तिन कह मन वसया, जिन तुरहों लिखिया आया, एक फिरै कनेरे करै गल्ला, गली किने ना पाया। कहे नानक शब्द सोहेला, सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों, पवित संगत सबाइया, कहन दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजै, विण सह जाय सहसा न जाय, नह जाय सहसा कितै, संयम रहे कर्म कमाए, सह सहजियो मलीन है कित संयम धोता जाय। मन तो बहु शब्द लागो, हर सिउ रहो चित लाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एह सहसा इव जाय। जियो हो मैले बार हो निर्मल, बार हो निर्मल जियो हो ता मैले, तिनी जन्म जुवै हारिया, एह तिशना वड्डा रोग लगा, मरण मन हो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम, सो सुन है नाही फिर है ज्यों बेतालिया। कहे नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुवै हारिया। जियो हो निर्मल बार हो निर्मल, बारों ता निर्मल जियो हो निर्मल, सतगुर ते करणी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचै नाही, मनसा सच समाणी। जानम रतन जिने खटिया, भले से वण जारे, कहे नानक जिन मन निर्मल, सदा रहै गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो रहै गुरु नाले। गुर के चरण हृदय त्याए, अंतर आत्मै समाले, आप छड़ सदा रह परणै, गुर बिन आवर न जाणै कोय। कहे नानक सुनो संतो, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त न पावै, पावै मुक्त न होर थै कोई, पुछौ बबेकियां जाए, अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुरु मुक्त न पाए,
आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन को नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपे हो सारिंग पाणी। कहे नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख वखाणी, हर हर नित कर है रसना, कहया कछु न जानी। चित जिन का हिर गया माया, बोलन पए रवाणी, कहे नानक सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ। शब्द से ती मन मिलया सच्चे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, सेव साकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेख गुरमुख किसे बुझाए, तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एकस स्यों लिवलाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सार न जाने, ततै सार ना जानी गुरु बाजों, ततै सार ना जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्यां रहण बिहाणी, गुर किरपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसिया, बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए, जिसनु अन दिन हर लिव लागे, जागत रहण बिहाणी। माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है, ए वड़दाता जे अगन में आहार पहुँचावे। उसनो केहो पोहे न सके, जिसनो अपनी लेव लावे, अपनी लेव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है। कहे नानक ए वड़दाता, सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया, माया अग्न सब एको जे ही करता खेल रचाया। जात इस पाणा ता जम्मिया, परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाओ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिनि विचे माया पाया। हर आप अमूलक है, मूल न पाया जाए, मूल न पाया जाए, किसै बिट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले, किसनों सिर सौंपी है विचों आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहा, हर वसै मन आए। हर आप अमूलक है, भाग तिना के नानका, जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुरु ते रास जानी। हर हर नित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन होआ बन जारा। ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए, होरत कितै जिचर हर रास पलै ना पाए। हर रस पाए पल्लै पीए हर रस, बहुड़ ना कृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिस आए। कहे नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया, हर तुम मैं जोत रखी, तातू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच, तातू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया तां चलत हुआ, चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया, जो तराखी तातू जग मह आया।
मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया, हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापय, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापय, अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया, जिन हार तेरा रचन रचिया सो हार मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यो चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत धरी, हर बिन आवर न देखो कोई हर बिन आवर न देखो कोई, नजरी हर निहालिया ए विश संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन आवर न कोई, कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिलया दिव दृष्ट होई, ए सरवण हो मेरे हो साचै सुनने नू पठाए साचै सुनने नू पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस सुमाणी सच अलख वेडाणी ताकी गत कही न जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचै सुनने नू पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख पै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाउ नावनिद किसदा अंत न जाई पाया, कहे नानक हर प्यार है जियो गुफा अंदर रख पै वाजा पवन वजाया, इहो साचा सोहेला साचे कर गावो, गावो ता सोहेला कर साचे जिथे सदा सच ते आवे, सचो ते आवे जा तुद पावे गुरमुख जिना बुझावे, इहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे, कहे नानक सच सोहेला सच्चे कर गावहे।

जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहिगुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिना दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणिया दे माण सतगुरु, ने ताणिया दे ताण, ने ओटिया दी ओट, ने आसरिया दे आसरा, सच्चे पिता धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद

मैं तकी तौ शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित मैं, मेरा सबो दुख गवाए जियो। सो कहो टल गुर सेवी है, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे हैं गुरु कै

गुरुग्रीव्य अंतर्जम सत्गुरु तंत्र साहेब से गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जग दी जोत हाजर हजूर कल जुग दे बोत आप जी दर दी हाजिर पर दया बेअंत गुरसिखी माई पहलो आप जी बंदे सत्कार जो बेअंत वैकटक आप जी अनुसार सिखी दान प्रोसा दान चरना कमना प्यार बख्शना खजानी भरपुर करे सो आओ गुरु प्यारे साध संग जीव कीर्तन की इनक सेवा प्रवान करनी हुई भुला चुका की खिमा करनी आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरवण करिए सिख पंथ के विद्वान सत्कार योग ज्ञानी लखविंदर सिंह जी उन्हां पासो अज दे श्री मुखाक दे विचार सरवण करिए दस रो फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का

शासन जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास को दिपाचे दसवीं प्रथम भगवती समर गए गुरु नानक लयते आए। फिर अंकित करते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोविंद सिमर श्री हर आए। श्री हर कृष्ण त्याग के सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर कारण निध्याए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाह के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठदार का ध्यान करके घर तक बोलो जी वाहे। गरीब नवाज आप जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया बन छकिया दे चलाई दे वाहे। दे के डिढ कीता तेना प्यार से प्यारा नहीं कमाई दे अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणियां धर्मे सी दिते बांध बांध कटवाए खोपरियां लवाइया चरखड़ियां चढ़े आर नचाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा से किसी तक सत्संग निभाए ते ना ही कमाई दा अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्तां दा गुरुद्वारे दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेता हुआ जब आवन का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा इच्छा कर देख देख की फतेह वृत की पहच पद की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बुरबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंडे पुंगे चुगल गठन धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा का मन नीवा मत उचे मत फत के राखे आप वाहेगुरु। गुरु गरीब नवाज पंथ सदा सहाय तैयार जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आपके पंथ को छोड़िया गलत दर्शनदार सेवा समाल दता अपने खालसा जी को बख्शो हिंद वोटिया की ओट गुरु न्यासरिया द्यासे गुरु धन धन ग्रंथ तार जी दया कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ताने रास। हे गरीब नवाज जी आप जी ने चरण कामना दरदास दार जी आपने बख्शिश की है अमृत वे प्रकाश पान हुए संतों दर्शन दर देकर रिहास दार जी बेहद बाणियों के पार इस वे रागी सिंह ने अपने चरणों से आशा की बात ने कीर्तन की विद्वान वीर ने अज हुक्मनामे की कथा प्यार की कृपा करो हुई भुलना चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सत्कर्म प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदे अनुसार की कृपालता करो जी अगो तो शुद्ध पित्र बाणी विचार की बार बुद्धि बख्शिश करो इमराज इस खुशी में आप दिए बख्शियां दाता पुत्र कड़ाप चाहते देगा तैयार करें हाथ दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संगत दी रसना लायक हो जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पित्र नाम जप बख्शिश करो दतार दुख क्लेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश देश रखा बख्शिश करो जी दतार जी आप जी बख्शियां दातों के नगर तुर सवार प्रवान करो ईवन बाज आपके चरणों सेवा कर रहे सारे टैलिए संघा सिंगणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाड़ी कला बख्शो तो सदा ही इस तरह अपने चरणों सेवा की भावना बखरी पालता करो ईवन बाज दतार जी हो अमृत वेले तो लैके दरते आई हैं साफ संगतान जी आदि दर प्रवान करो घड़िया लेके लाओ संगतान दर देते फुल बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी कृपा करो गुरु ईवन बाज दतार से कौन खास है पंथ एक दस भाग प्यार जी बख्शिश करके सत लोज दास बख्शो चाना ना जुड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शे दतार हर मैदान जवान फतेह बख्श के पाता करो जी कृपा करो गरीब नवाज दूर दराज कराने बैठी लाइव कर रखी दूसरा कर रही है शायद संगतें की हाजिरी प्रवान करो घड़ियां देख लाओ तारा अपने बख्शे की संगतान को बख्शे संगतान के आपके चरणा धनबाद कर रहे हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेअंत माया आ लाई गुरु घर में गुरु घर सेवा संगत दस संगतान माया पेटा कर रही चरणा प्रवान करो बख्शा सब जी कमाइया सफल करो अज वार साफ संगत शुभकामना सफल पूरिया करो जी मेहरान कराओ सेवा प्रवान करो भुला चुका की माफी बख्शो वैद्य रुकमनामी बख्शे के उपरंत लड़ीवार सहज पाठ राम करने वास्ते आगा बख्शो रहते काशवार के चरण कदार जी बनाओ शुद्ध से पुत्र सेवा लैंड की बात दार सही प्यारे मेरे जिन्हें अपने आपका नाम दिता नानक नाम चलती कला तेरे पास। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की
जो प्रभु को मिल भोज है कोज जबद मैली राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई क्वार हुए सा मिलेंगे बजे शरण जो हो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े तो उतरे पा जो शरदा कर सीम दे गुरु पारे उतारन हा

निमाणया तू माण न चीजिया चीज कर मेरा गोविंद तेरी कुदरत का कुर्बान धन सो वेला जित दर्शन करना

आपे थाप उठापे साजे, प्रभ की शरण गहत सुख पाइय, किछ भउ न व्यापै बालका, गर्भ अग्न मह जिने उबारिया, रकत किरम मह नहीं सुंगारिया, अपना सिमरन दे प्रतपालिया, ओ सगल कटा का मालका, चरण कमल शरणाई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख निवारे, जप हर हर भउ नहीं काल का, समरथ अकथ अगोचर देवा, जी जंत सबता की सेवा, अंडज जेर जसे तज उत्पुज, बहु प्रकारी पाल का, तिसह प्राप्त हुए निदाना, राम नाम रस अंतर माना, कर गह लीने अंधकूप ते, विरले के ही साल का, आद अंत मद प्रभ सोई, आपे करता।

करे सो होई। भ्रम भौ मिटिया साध संगते, दालद ना कोई काल का। ऊतम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगोर वाला। बासन मेट निवासन हुई है, कलमल सगले जाल का। संता की यह रीत निराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहु प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जी वह तेरे दासा, बन जल पूरन थाल का। तत्ती वाओ न ताको लागे, सिमरत नाम अनदिन जागे। अनद विनोद करे हर सिमरन, किस माया संग न ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। आपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारे, रंग रत्ते तेरे दास अपारे। तेरे रंग रत्ते तुद जे हे विरले, केई पाल का। तेरे रंग रत्ते तुद जे हे विरले, केई पाल का। तिन की धूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा। तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का। साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत कोई। काम क्रोध अहंकार तजाए, किस जन को उपदेश निर्माल का। तुद विन नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा। हों बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का। सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई। नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का। मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चरण कमल हृदय नित धारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना। सो ठाकुर क्यों मनहो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे। सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना। जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही। साध संग भज अचुत स्वामी, दरगह शोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निदान सहज सुख नौ निद। सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा। शास्त सिमृत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी। काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना। जिस रूप न रेखिया कुल नहीं जाती, पूरन पूर रहया दिन राती। जो जो जपै सोई वडभागी, बहुड़ न जोनी पावना। जिसनु बिसरै पुरख बिदाता, जलता फिरै रह नितताता। अकिरत घणा कौ रखै न कोई, नरक घोर मह पावना। ज्यो प्राणी ज्यो प्राण, तन धन जिन साजिया। मात गर्भ मह राख निवाजिया, तिस स्यों प्रीत छाड़ अनराता। काहू सिरै न लावना, धार अनुग्रह स्वामी मेरे। घट घट वसहै सबन कै नेरे, हाथ हमारे कछुए नाही। जिस जनाहे तिसै जनावना, जाकै मस्तक तुर लिख पाया। तिस ही पुरख न व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई। दूसर लवै न लावना, आग्या दुख सुख सब कीने।
अमृत नाम बिरलै ही चीने, ताकि कीमत कह न जाई, जत कत उही समावना। सोई भगत सोई वडदाता, सोई पुरख सोई पूरन पुरख विदाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन भावना। मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदहै कटहै ना कटाए, सोई होए जे करते भावै, कह कह आप वंजावना। अंधकूप ते से ही काटे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा धार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद ध्यावना। तेरी कीमत कहन न जाई, अचरज रूप वड्डी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना। मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला पहला। विण गाहक गुण वेचियै, तौ गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिलै, तौ गुण लाख विकाए। गुण ते गुण मिल पाईऐ, जे सतगुर माहे समाए, मोल अमुल ना पाई, मुल अमुल ना पाईऐ, वणज ना लीजै हाट। नानक पूरा तोल है, कबहु न हुवै घाट। महला चौथा। नाम विहूने भरम सह, आवह जावह नीत, एक बांधे एक ढीलिया, एक सुखिए हर प्रीत। नानक सच्चा मन लै, सच करनी सच रीत। पौड़ी। गुरते ज्ञान पाया, अत खड़ग करारा, दूजा भ्रमगढ़ कटिया, मोहलोभ अहंकारा। हर का नामन वसिया, गुर शब्द विचारा, सच संजम मत ऊतमा, हर लगा प्यारा। सब सचो सच वर्तदा, सच सिरजनहारा। श्लोक महला तीजा। केदारा रागा विच जानिए भाई, सबदे करे प्यार, सत संगत स्यो मिल दो रह, सच्चे धरे प्यार। विचों मल कटे अपनी, कुला का करे उधार, गुणा की रास संग्रह, अवगुण कढ़ै विडार। नानक मिलिया सो जानिए, गुरु न छोड़ै अपना, दूजै न धरे प्यार। महला चौथा। सागर देखूं डर मरों, पै तेरै डर नाहे, गुर कै शब्द संतोखिया, नानक बिगसा नाए। महला चौथा। चढ़ बोहितै चाल सौ, सागर लहरी दे, ठाक न सच्चै बोहित है, जे गुर तीरक दे। तित दर जाए उतारिया, गुर दिसै सावधान, नानक नदरी पाईऐ, दरग है चलै मान। पौड़ी। नेह कंटक राज पुंच तू, गुरमुख सच कमाई, सच्चै तख्त बैठा न्याऊ कर, सत संगत मेल मिलाई। सच्चा उपदेश हर जापना, हर स्यों बनियाई, ऐथै सुखदाता मन वसै, अंत हुए सखाई। हर स्यों प्रीत उपजी, गुर सो जी पाई। श्लोक महला पहला। भूल

तेरा कोई। सतगुरु साचा मन वसै साजन उत ही ठाए, नानक मंत्र बतासी है सिफती साचै नाए। महला तीजा, आपे करनी कार आपे करे रजाए, आपे किसी बख्श ले आपे कार कमाए। नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए। पौड़ी माया वेख न भुल तू मन मुख मूर्खा, चलद्या नाल न चलई सब झूठ दर्ब लखा। अज्ञानी अंध न बूझही सिर ऊपर जम खड़ग कलखा। गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चखा, आप कराए करे आपे हर रखा। श्लोक महला तीजा, जिन्ना गुर नहीं भेटिया पै की नाही बिंद। आवन जावन दुख घना कदे न चूकै चिंद। कापड़ जिवै पछोड़ी है घड़ी मोहत घड़ियाल। नानक सच्चे नाम बिन सिरहु न चुकै जंजाल। महला तीजा, त्रिभवन।

सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शेऊन हर नाम समाने आपे भगति लायो गुर शब्द निशाने सानमुख सदा सोहणे सच्चा दर जाने एथै उथै मुक्त है जिन राम पछाने धन धन से जन जिन हर सेवया तिन हो कुरबाणी। श्लोक महला पहला महल।

वाह पौड़ी तख्त राजा सो बह जे तख्त लायक होई जिनी सच पछाणिया सच राजे से ए भूपत राजे ना आखी है दूजे पाए दुख होई कीता क्या साला ही है जिस जादे बिलम न हुई निश्चल सच्चा एक है गुरमुख बुझ है सो निश्चल होई। श्लोक महला तीजा। सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाही नानक से सुहागणी ये सतगुर माहे समाहे। महला तीजा। मन के अधिक तरंग क्यों दर साहिब छुट्टी है जे राचै सच रंग गूड़ै रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुट्टी है जे चित लगै सच पौड़ी। हर का नाम अमूल है क्यों कीमत की जै आपे सृष्ट सब साजियन आपे वरती जै गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत की जय। गुर शब्दी कमल बिगासिया एव हर रस पीजै आवण जाना ठाकिया सुख सहज सुविजै। श्लोक महला पहला। ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है सच्चै रत्ता सच। महला तीजा। सहज वनस्पत।

फुल पिरंग पौड़ी जो जन लूजह मन स्यों से सूरे परदाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्हें आप पछाना ज्ञानिया का यो महत है मन माहे सुमाना हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा जोगी होवा जग पवा कर कर भिख्या लियो दरगह लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ न लदिया सब बद्दी जमकाल नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम संभाल। महला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेव्य हो ना कोई ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जेवड़ अवर ना कोई तिस सरनाई छूटी है लेखा मंगे ना कोई सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओह शब्द दे हृदय जिसदै सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वड़ियाई दे सच्चे माहे समावसी जिसनु नदर करे पौड़ी सूरे एह ना आखी है अहंकार मरह दुख पाव है अंधे आप ना पछाणनी दूजै पच जावह अत क्रोध

भेद कूक सुनाव है अहंकार मुए से विगति गए मर जन्म है फिर आव है श्लोक महल्ला तीजा कागो

अरनहार। हुक्म पछाणै उजला सिर काष्ट लोहा पार। तृष्णा छोड़ै भय वसै नानक करनी सार। महला तीजा मारू मारन जो गए मार न सकह गवार। नानक जे इहो मारी है गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया ना मरै जे लोचै सब कोए। नानक मन ही कौ मन मारसी जे सतगुर भेटै सोए। पौड़ी दोवै तरफा उपाई ओल विच सकत सिव वासा। शक्ति किनै न पायो फिर जन्म बिनासा। गुर सेवै साथ पाईऐ जप सास गिरासा। सिमरत सास सोध देख उतम हर दासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा।

पौड़ी। कंटक काल एक है, और कंटक ना सूझै। अफर्यो जग में वर्तदा, पापी स्यों लूझै। गुर शब्दी हर भेदी है, हर जप हर बुझै। सो हर शरणाई छुट्टी है, जो मन स्यों जूझै।

देख न भूल, दिल दरवानी जो करे दरवेशी दिल रास, इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। महल्ला पहला अलगाओ जोए मधुकड़ाओ, सारंग पान सबाई हीरे हीरा विद्या, नानक कंठ सुभाए पौड़ी मनमुख काल व्यापदा, मोहे माया लागे खिन मह मार पछाड़सी, भाई दूजे ठागे फिर वेला हाथ न आवई, जम का डंड लागे तिन जम डंड न लगई, जो हर लिव जागे सब तेरी तुद छड़ावनी, सब तुद लागे। श्लोक महला पहला सरबे जोए अगछमी, दुख कनेरो आथ कालर लादस सर लागनो, लाभ न पूंजी साथ। महला पहला पूंजी साचो नाम तू, अखुटो दर्ब अपार, नानक वखर निर्मलो तन साहु वापार। महला पहला।

क्या मन रत्ता नाए, लोयन रत्ते लोयनी कन्नी सुरत समाय, जीव रसायन चूनड़ी रत्ती लाल लवाय, अंदर मुस्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी। इस जुग में नाम निदान है, नामो नाल चले एहो अखुट कदे ना निखुटई, खाए खर्चे ओ पल्ले हार जन नेड़ ना आवई, जम कंकर जम कले से साहा सच्चे बन जा रिया, जिन हार धन पल्ले हर कृपा ते हर पाई है, जा आप हर कल्ले। श्लोक महला तीजा। मन मुख व्यापार है सार न जाननी, बिख विहज है बिख संग्रह है, बिख्यों तरह प्यार बाहरों पंडित सदाए दे, मनहो मूर्ख गावार हर्ष्यों चेतना लायनी, वादी धरन प्यार वादा किया करन कहानिया, ऊड़ बोल करह आहार जग मह राम नाम हर निर्मला, और मैला सब आकार नानक नाम न चेतनी, होए मैले मरह गवार। महला तीजा। दुख लगा बिन सेवे है, हुक्म मन्ने दुख जाए, आपे दाता सुख है दा आपे दे सजाए, नानक एवै जानी है सब किच तिसै रजाए। पौड़ी। हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नावै तृप्त नाही, दूजे भरम भुलाया हौ मैं दुख पाही, बिन कर्मा किछु न पाईऐ जे बहुत लो चाही, आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही, आप करै किसे आखियै दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा। इस जग में संती धन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए, सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही न जाए, इत धन पाया भुख लथी सुख वसिया मन आए, जिन्ना कौ तुर लिखिया तिनी पाया आए, मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाए, अन दिन फिरदा सदा रहे भुख न कदे जाए, सांत न कदे आवई नह सुख वसै मन आए, सदा चिंत चित वदा रहे सहसा कदे न जाए, नानक विण सतगुर मत भवी सतगुर नु मिलै ता सब दुख माए, सदा सदा सुख में रह सच्चे माही समाए। महला तीजा। जिन उपाय मेदनी सोई सार करे, एको सिमर हो पाए रहो तिस बिन अवर न कोय, खाना शब्द चंगियाइया जित खादै सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला, मैला कदे न होए, सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे न होए, देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए, नानक गुरमुख बुझी है जिसनु आप विखाले सोए। पौड़ी। अंतर जप तप संजमो, अंतर जप तप संजमो, गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याही है, हौ मैं अज्ञान गवापै अंदरो अमृत भरपूर है, चाखिया साध जापै जिन चाखिया से निर्भउ पए, से हर रस त्रापै हर कृपा धार पियाया फिर काल न व्यापै। श्लोक महला तीजा। लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण न विहाजै कोए
गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पाईन जिसनो नदर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते।

पौड़ी। अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याऊ, गुरशब्दी दर जानिए अंदर महल असराऊ। खरे परख खजाने पाईन खोटिया नाही थाऊ, सब सचो सच वरतदा सदा सच न्याऊ। अमृत का रस आया मन वसिया नाऊ, श्लोक महला पहला। हौ मैं करी ता तू नाही, तू होवे हौ नाहे। बुझो ज्ञानी बुझना ए अकथ कथा मन बाहे, बिन गुर तत् न पाईए अलख वसै सब माहे। सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसै मन बाहे। आप गया भ्रम पौ गया जन्म मरण दुख जाहे। गुरमत अलख लखाइए उत्तम मत तराहे। नानक सोहंग हंसा जप जप हो त्रिभवन तिसै समाहे। महला तीजा। मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार, से जन विरले जानी है कल युग विच संसार। आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार, नानक नाम रते दुत्तर तरे पौजल बिकम संसार। पौड़ी। मानुक अंदर ना पालनी मुठे अहंग मते, चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तते। सिमरत शास्त्र न सोधनी मन मुख विगुते, बिन गुर किने न पायो हर नाम हर सत्य। तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते, सिमरत सा

कृता निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़ यार करे पुराए अशांत मलेच मार पाक खाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कहे क्या बारे न जाने जो तुझ पावे सही फलिका तू सदा सलामत संत नाम संत नाम राम राम संत दो संत कहें सिर्फ।

करनी है विचार शिक्षा अब सोहन पंच प्रवाण नगरी कर्म स्वयं कच्छ पाई उठ पाए नानक गया।

गुर प्रसाद जब आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी सत्य सोचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवट हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे सुधाए अशांत मलेर माल पाप खाए अशांत निंदक करे पा नानक नींद कह जा मारे न जामा के जो तुम पावे सही परिकार सुना सुना मत संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें सिर्फ।

अंतर करती जग मरना सब गुण तेरे नाही होए बिन गुरकी ते बस आसानी ब्रह्मा सत सुहाग ब्रह्म कवन सुवेला भगत कवन कवन सिद्ध कवन रात

में जाए है साला जी साला है नदियां से बाहर पासों न जान समुद्र सा सरदा गिरी तुल अंत न सुखी कहना अंत न करना देना अंत न देखना।

जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं डीठ पिछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ हर नामो मंत्र जड़ाइंदा कटे हां मैं रोग नानक सतगुर सिना मिलाया जिना तुरे पाया संजो तन तन सतगुरु ग्रंथ साहब जी पावन पवित्र राही दरबार दियां हाजरियां बड़े ही अमंगा भरे समय ते आके हाजरी भर के बख्शा लैरी परम सत्कार जो सत्संग जीओ आप गुरां की बख्शी फतेह सांझी करन दी कृपालता करनी सब ने जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद जी। सब तो पहला मैं आप सब दा इथों दी समूह संगत वालों ते समूह प्रबंधक कमेटी के मैंबरों वालों सब नूं जीवा आखदा नाल मैं जीवा आखदा सिंह साहब ज्ञानी गुरमिंदर सिंह जी सचखंड श्री हरिमंदर साहब अमृतसर वाले जिन्होंने कि अपने जिवें ड्यूटी तो समा कढ के इत्थे आए कि अज इस प्रोग्राम विच हाजरी निभा रहे ने ते नाल ही जीवा आखदा मैं भाई साहब गुरमेल सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार श्री हरिमंदर साहब अमृतसर वालियां नूं। ते प्रोग्राम काफ़ी आपां लेट हाँ मैं उस ते नहीं जाणा आपां सारे जाणदे हां ना मैं हिस्से दसने सारे पता हैगा व्याह दे हिस्सों का सो मैं हुण बेनती करा आपां आरंभ करिए भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी नूं बेनती है कि वह कीता रोड़ी कम सुहार के कार्य दे सुहार सतगुरु सत साखी शब्द पढ़ गए जी।

रामदास साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उचारण कीती हुई गुरबाणी लावां दा पाठ होवेगा। जिस वेले दास सतगुरु पातशाह दी बाणी दा उचारण करेगा ते सुभाग जोड़ी ने इसे प्रकार ही सतगुरु पातशाह दे सन्मुख बैठ करके लाभ दा पाठ श्रवण करना। जिस वेले उसे लाभ नू रागी सिंह कीर्तन विच पाके गायन करनगे तां सुभाग जोड़ी ने बहुत ही सत्कार अदब दे संजोगत सतगुरु नू मत्था टेक करके सतगुरां नू सज्जे हथ रख के भाव इस पासे दी हौली हौली सहजे सहजे परकरमा करनी, कोई काहल नहीं करनी, फिर अपनी जगह त्याग करके बैठ जाना, सज जाना। इसे प्रकार ही दूसरी तीसरी ते चौथी लाभ दा पाठ ते नाल कीर्तन होवेगा। बाकी दूसरी बेनती, जेड़े कोई वीर फोटोग्राफी कर रहे, वीडियो बना रहे ने, ये सुभाग जोड़ी दी परकरमा दे विच आउण दी कोशिश ना करन। बाहरले पासे हो करके जो वीडियो जां कोई फोटोग्राफी कर लेनी। बाकी दूसरी बेनती नाल ही कोई भी बच्चा इस सुभाग जोड़ी दी परकरमा विच आउण दी खेचल ना करे। उन्हां दे माता पिता नूं बेनती भी बच्चियां नूं पकड़ के रखना, क्योंकि यह जिहड़ा आनंद कारज है सतगुरु पातशाह दे चरणां विच अरदास बेनती करके आपां परकरमा आरंभ करन जा रहे हां। यह बेनतियां ने साध संगत जी ख्याल रखना। सो आओ हुण सतगुरु पातशाह जी दी पावन पवित्र जो गुरबाणी सोही राग अंदर सतगुरु जी ने लावां दी बख्शिश कीती है, प्यार सत्कार दे नाल गुरबाणी आपां श्रवण करिए जी।

0: गरीब नवाज सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जीओ दसा पाखियां दी आत्मिक ज्योत सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दाता जी आप दे दर करदे सेवक सरबत माई भाई गुरु की साथ संगत पातशाह जी आप जी दे चरण परसदे होए आनंद कार्य खुशी विच शुकराना करदे होए कीर्तन भेंट माया अरदास कराउंदे ने सतगुरु सरबत दे कार्ज रास करने पातशाह जी सुभागी जोड़ी दे सिर ते मेरा पर हथ रखना दर कर दिता है अल सिखी सिदक भरोसा नाम दियां दातां नाल निवाजना सो जिथे ये खुशियां भरे समागम चल रहे ने उत्थे नाल ही दुखदाई खबरां भी ने तेरा पाणा तू है मनाए जिसनू होए दयाला सो सतगुरु मेहर करन पाणा वरत्या और उसनू मिठा करके परिवार ने मन्या अते ए सारे कारज गुरु आसरे नाल गुरु की ओट नाल नेपरे चढ़े ने निर्विघन संपूर्ण हो गए ने सो काका पवन करण सिंह पवकरण सिंह जी रंधावा उन्होंने सुरगवासी सरदार रविंदर सिंह जी रंधावा उन्होंने गुरु कृपा नाल आनंद कारज संपूर्ण हुए ने सत्कार योग सरदार सरबजोत सिंह जी सुवधी बीबी सरबजीत कौर जी सुवधी पोत्री सुरगवासी चेहदार मेजर सिंह जी सुवधी जो हमेशा ही पंथक सेवावां लई तत्पर रहिंदे सन दासरिया नूं उन्हां दे नाल कुछ समां सर्व करन दा वी सुभाग प्राप्त होया उह बहुत ही मिठ बोले और समाज सेवक सन हमेशा ही समाज दी पंथ दी सेवा लई उह तत्पर रहिंदे सन सो इह सारा परिवार दासरिया नूं इन्हां नूं भी बच्चियां नूं बचपने तों ही दास जानदे ने बहुत ही महाराज दी कृपा है परिवार दा इलाके विच पंजाब विच बहुत सत्कार सत्कार प्यार है सो इसे करके ये सब पंथक हस्तियां मानाज हस्तियां सत्कार पूर्वक हस्तियां पहुंचियां ने सिंह साहब जी जो बड़े प्यार नाल पहुंचे ने सरबत परिवार उन्होंने बहुत बहुत उन्होंने धन्यवादी ने उन्होंने शुकराने विच ने सो दासरे भी परिवार के बहुत बहुत धन्यवादी हैं सरबजोत सिंह जी उन्होंने उन्होंने पुराना प्यार याद करके दासरिया नूं इस सुभागे समय लई नियुक्त किया सी सो दासरे हाजिर होए ने जो आनंद कार्ज की सेवा इन्होंने लाई सी वो गुरु कृपा नाल निपड़े चढ़ी है अते नाल नाल ही इन्हां नूं बधाइयां दिंदे हां सतगुरु कृपा करन इस परिवार ते दोनों परिवार ते चढ़दी कला सतगुरु जी रखन तंदुरुस्तियां दी दात बख्शन सो इतना समा प्रवान करना होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा फतेह के जाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
1: सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेल सगल जगत चंगे

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: लख खुशियां पातशाहियां ये सतगुर नजर करे, निमके एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। तन तन सतगुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन दरबार दियां हाजरियां, बड़े मंगा ते खुशियां भरे समय ते पढ़ के बख्शां लै रही परम सकार जो सात संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के पार बख्शिश होई है कि काका भाव करम सिंह रंधावा सपुत्र स्वर्गासी सरदार रविंदर सिंह रंधावा, सरदारनी सुखविंदर कौर रंधावा जी के आनंद कार्ज होए ने। बच्ची पहला अगे होर कर लवा, जो पोतरे हैं सरदार साहिब सिंह रंधावा सरदारनी सुरजीत कौर रंधावा के, दूसरे हैं सरदार भाग सिंह सरदारनी स्वर्ण कौर संधु जी के, उन्होंने आनंद कार्ज होए ने। सरदार भाव करम सिंह रंधावा जी की बेटी गुर सिमरन कौर सवदी जी, जो सपुत्री है सरदार सरबजोत सिंह सवदी, सरदारनी सरबजीत कौर सवदी, पोतरी है स्वर्गवासी जथेदार सरदार मेजर सिंह सवदी, स्वर्गवासी सरदारनी जंगीर कौर सवदी, दूसरी है जथेदार शहीद भाई गुरदेव सिंह जी कौंके दे, सरदारनी गुरमेल कौर कौंका जी। दोनों परिवार बहुत ही गुरमुख ने, ते गुरु ने बख्शिश की है धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कि इन्हां दे आनंद कार्ज गुरमर्यादा अनुसार निर्विघ्नता सहित संपूर्ण होए ने। इस गुरी खुशी भरे मौके से मैं जिथे सुभाग जोड़ी नूं लख लख वधाई दिंदा, उत्थे उन्हां दे माता पिता रिश्तेदारां साख संबंधियां मित्रां दोस्तां नूं इत्थों दी समूह संगत वालों, इत्थों दी समूह प्रबंधक कमेटी वालों, समूह रागी जथियां वालों, ग्रंथी सिंघां वालों लख लख वधाई दिंदा हां। नाल अरदास करदा हां अकाल पुरख पास कि अकाल पुरख इन्हां दी जोड़ी सदा लई बनाई रखे। जोड़ी जीवै जुग चार तिहारी गुरमुख दा फरमान है, ते नाल इन्हां नूं चेते करा दें कि आप जी ने अज चार परिक्रमा लै के धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने चौगिर्द बिना बोले इस जीवन के अंदर एक दूजे का साथ देने लई प्रण किया है। गुरु आप जी का प्रण पूरा करे, ते नाल आप जी नूं इस गृहस्थी जीवन दियां सारियां खुशियां सुख बख्शदा होया सदा सेवा सिमरन नाल जोड़ के रखे। ते इस समय नूं मुख रखते हुए मैं बहुता नहीं समा लैना, हुण इसे जरूर बेनती करा, सब तो धन्यवाद है करा मैं सिंह साहब यानी गुरमिंदर सिंह जी का, जिन्होंने आ के बड़े हिरजेवे भरे समय तो आ के इस हाजरियां भरिया ने, ते उन्हां दी फ्लाइट 4 बजे है, सो बहुत वजावां सी, सो हार्दिक धन्यवाद उन्हां दा, हार्दिक धन्यवाद है भाई साहब भाई गुरमेज सिंह जी हजूरी रागी सिरवार साहब श्री अमृतसर वालियां दा भी कीर्तन करन वास्ते, ते धन्यवाद बाकी समूह सारी सेवादारां दा, सो धन्यवाद इत्थों दी समूह कमेटी दा जिन्हां ने आ के अज सारिआं ने हाजरियां भरियां। आप सब संगतां दा दोनों परिवारां वल्लों धन्यवाद, ते गुरु कृपा करे। हुण मैं समय नूं मुख रखदा होया बेनती करां कि जोड़ी नूं सिंह साहिब जी सन्मानित करनगे जी इत्थों दे गुरु घर वल्लों। मैं बेनती करा सिंह साहिब जी नूं कि ओह सेवा निभाउण जी। जोड़ी सुभाग जोड़ी नूं बेनती है खड़े होके लै लो जी सन्मान, शाओ जी खड़े हो जाओ। हां जी सिंह साहब भी आप भी लैके आए ने सन्मान दरबार साहब तो, सो उन्होंने भी सन्मान करना हैगा, सो दोनों सन्मान चलणगे जी। हाँ जी दे दिओ, वो भी दिओ ना, वो भी दिओ ना, तुसी दे दिओ, वो भी दिओ। हाँ दे दिओ, उसे दे दिओ, उन्होंने फड़ा दिओ ना, सिंह साहब ने फड़ा दिया।

0: कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक खुशी सत सुचे सोच।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। एक कार हैगी जिन्हें राह रुकिया दूसरों का नंबर हैगा जी उहदा 9REC688। कार कृपा करके मूव करियो जी। कार का नंबर हैगा जी 9REC688 जिहदी भी हैगी उह मूव करो जी। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बदल दे।

संत जन मिल पाई हो सच्चा नाम संभाल तो सब दोही का उथै नाल गुरपुरे ते पाई है अपनी नजर निहाल गुरपुरे ते पाई है अपनी नजर निहाल करम प्राप्त ते सोवै जिसनु होए दयाल मेरे मन गुर जेवड़े अवर न कोए तुजा ताओ न को सुजै गुर मेले सच सोए रहाओ सगल पतार पतार तिस मिलाए जिन गुर रिठा जाए गुर चरणी जिन मन लगा सेवड़ भागी माए गुरदाता समरथ गुर गुर सब मै रहा समाए गुर परमेसर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए केत मुख गुर सलाही है करण कारण समरथ से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ गुर अमृत नाम पिया लिया जन मरण का पथ गुर परमेश्वर सेव्या भय भंजन दुख लथ सतगुर गैर गंभीर है सुख सागर अग खंड जिन गुर सेव्या अपना जमदूत न लागे डंड गुर नाल तो न लगी खोज डिठा ब्रह्मांड नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन मै मंड श्री राग महला पंजवा मिठा करके खाया कौड़ा उपजिया साध पाई मीत सुरद किए बिखिया रचिया बाद जांदे बिलम न हो बई विणना व बिस्माद मेरे मन सतगुर की सेवा लाग जो दिस सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ ज्यो कुकर हरकाया तावै दस जाए लोभी जंत न जानाई पाक अपाक सब खाए काम क्रोध मत व्यापिया फिर जो नी पाए माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए तृष्णा पंखी फासिया निसना पाए माए जिनकी तात सन जानाई फिर आवै जाए अनेक प्रकारी मोया बहुविधे संसार जिसनो रखै सुर है समृथ पुरख अपार हर जन हर ले उदरे नानक सद बलिहार सिराग महला पंजवा कर दूजा गोयल आया गोयली क्या तिस डंफ पसार मोहनत पुन्नी चलना तू संभल घर बार हर गुण गाओ मना सतगुर से प्यार क्या थोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रहन प्राणाए उठ चल सह प्रभात क्या तो रत्ता ग्रिस्यो सब फुल्ला की बागात मेरी मेरी क्या करे जिंदी आसो प्रब लोड़ सर पर उठी चलना छड़ जासी लाख करोड़ लख चौरासी भ्रम त्या दुर्भ जन्म पाए ओए नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आए ओए श्री राग महला पंजवा तिचर वसा सुहेलड़ी जिचर साथी नाल जां साथी उठी चलिया ता धन खाकूराल

जिचर वसिया कंतकार जियो जियो सब कहात जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात। पेयड़ सो सेव तो साहुड़ सुख वस गुरमिल चाजे चार सिख तुत कदे न लगे दुख सबना सौरा वंजना सब मुखला मनहार धन सुहागण नानक धन सुहागणी जिन सहनाल प्यार। सिर राग महला पंजवां घर छेवां करण कारण एको ही जिनकी आया कार तिस त्यावो मन मेरे सर्व को आधार। गुर के चरण मन मैं त्याए छोड़ सगल सियाण पास आज शब्द लिवलाए रहा। दुख कलेस न पौ व्यापै गुरमंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरियो न कोए। देख दर्शन मन साधारै पाप सगले जाहे हो तिन कै बलिहारण है ये गुर की पैरी पाए। साध संगत मनोसै साच हर का नाओ सेवड़ भागी नानका जिन्ना माने पाओ। श्री राग महला पंजवां संचहार तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार। जप मन नाम एक यद अपार प्राण मन तन जिन्हें दी आर देकायाधार। रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संतसरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार। सत संतोख दया कमावे करनी सार आप छोट सब होए रेना जस दे प्रभ निरंकार। जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नान गुर भरम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवां दो कृत सुकृत मधे मंधे संसार सगलाना दोहों ते भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी तुम वट पुरख सुजाना। रहाओ मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही तत् समदर्शी संतो कोट कोट मंदाही। कहन कहा मने कीर्त कर ला कथन कहन ते मुक्ता गुरम कोई विरला। गात अवगत कछ नजर न आया संतन की रेण नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवां कर सतवां तेरा भरोसा प्यार है मैं लाड़ लडाया पूला चुके बारक तू हर पिता माया। सुहेला कैन कहावन तेरा बेखम पावन रहाओ हो मान तान करो तेरा हो जानो आपा। सभी मद सब ते बाहर बेमोताज बापा पिता हो जानो नाही तेरी कवन जुगता। बंधन मुक्त संतो मेरी राख ममता भय कृपाल ठाकुर रहो आवन जाना। गुरमिल नानक बार ब्रह्म पिछाणा। श्री राग महला पंजवां घर पहला संत जना मिल पाईया कटियाड़ा जमकाल सच्चा साहेब मन उठाओ आख समदयाल पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल। मेरे सतगुरा हाँ तुद बिटो कुरबान तेरे दर्शन को बलिहारण तुस दिता अमृत नाम रहाओ। जिन तू सेव्या भाव कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निदान। गुर जेवड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रमाण है जिन गुर मिलया सुभाए सच्चे से तीरत्या दरगह बै समझाए करते हथ वडियाईया पूर्व लिखिया पाए। सच करता सच करनार सच साहेब सच टेक सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध विवेक सर्व निरंतर राव रया जप नानक जीवा एक। श्री राग महला पंजवां गुर परमेसर पूजी है मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार। सतगुर बचन कमावणे कमावणे सच्चायो विचार बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब शार। मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मनो सह पूर्ण हो वैकाल। रहाव गुर सम्राट अपार गुर वडभागी दर्शन होए गुर गोचर निर्मला गुर जेवड़े वरना कोए। गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सोए।
गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुर दाता हर नाम देव द्रै सब संसार गुर समरथ गुर निरंकार गुर उच्चा गम अपार गुर की महिमा गम है क्या कथे कथन हार। जितड़े फल मन बाचिया तितड़े सतगुर पास पूर्व लिखे पावने साच नाम दे रास सतगुर सरणी आया बौड़ नहीं बिनास हर नानक दे ना।

चरण सरेवणे तीर्थार का नाओ अगै दरगै मनिए मिलै निथावे थाओ पाई रे साची सतगुर सेव सतगुर सुठै पाईए पूर्ण लाखा पेव राव सतगुर विटो वारिया जिन दिता सच नाओ अंदन सच सलाना सच्चे के गुण गाओ सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ सास गिर आसन मिसर सफल मूर्त गुरे आप गुर जेवड़े वर्णन दे सही आठ पैर तिस जाप नदर करे ता पाई है सच नाम गुण तास गुर परमेश्वर एक है सब मेरे असमाय जिनको पूर्व

आख आख मन मामना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनो वाय सुनाई है सो केवड़ के तथाए आखण वाले जितड़े सब आख रहे लिवलाए जिसनो वाय सुनाई है सो केवड़ के थाए आखण वाले जितड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा लोग मापार पाकी नाई पाक थाए सच्चा परवदिगार रहाव तेरा हुक्म न जापी कितड़ा तेरा हुक्म न जापी केतरा लेख न जाना कोए जे सो सार मिली है तिल न पुजावे रोए कीमत किने न पाया सब सुन सुनया कै सोए पीर पे कामर सालक साधक सौदे और शहीद सिख मसाए काजी मुला दर दर वे सिर सीद बरकत तिन कह अगली पढ़दे रहन दरूद पुछना साजे पुछन टाए पुछना दे वाले अपनी कुदरत आपे जाना है आपे करण करे सबना वेखै नजर कराए करे सबना वेखै नजर कर जय भावै तै दे आवा नाव न जानिए नावा केवड़ नाओ जिथे वैसै मेरा पातशाह सो केवड़ है थाओ अंबड़ कोई न सकई हो किसनों पुछण जा वरना वरन पावनी जय किसा वड्डा करे वड्डे हथ वडियाईया जय भावै तै दे हुक्म सवारे अपने चसन ढिल करे सबको आखै बहुत बहुत लैणा कै विचार केवड़ दा ताया आखिया देख रहा सुमार नानक तोट न आवै तेरे जुगै जुगै भंडार महला पहला सबे कंत मेलिया सगलिया करै सिगार कंत गणा वण आईया सुहावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज कुआर हर जियो यो फिर रावै नार तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लै सवार रहाव गुर सबदी सिगारिया तन मन पिर कै पास दय कर जोड़ खड़ी तकै सच कहे अरदास लाल रती सच भय वसी भाई रती रंगरास प्रिय की चेरी कंडी है लाली मन नाओ सची प्रीत न टुटई सचे मेल मिलाओ सब रती मन विद्या हो सदबल हर जाओ सा धन रंड न बैसई जे सतगुर माए समाए फिर रिसालू नौतनो साचो मरे न जाए नित्र वै सुहागणी साची नदर जाए साच तड़ी मन मांडी आए कापड़ प्रेम सिगार चंदन चीत वसाया मंदिर दसवां द्वार दीवक दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुर सुहावनी साचे प्रेम प्यार बिन पिर पुरख न जानई साचे गुर कै हित प्यार निसंदिहारी सुती है क्यों फिर बिन रहण विहाए अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाए जा धन कंत न राविया ता बिरथा जो बन जाए से जय कंत महेलड़ी सुती बूज न पाए हो सुती फिर जागना किसको पूछन जाए सतगुर मैली पै वसी नानक प्रेम सिखाए सी राग महला पहला आपे गुण आपे कथाए आपे सुन विचार आपे रतन परख तू

हरी सेज पतार चोआ चंदन लाइए कापड़ रूप सिगार खेहू खेर लाइए छोड़ चला कर बार महर मलूक आइए राजा राव की खान चौधरी राव सदाइए जल बलिया विमान मनमुख नाम विसारिया जव डव ददा कान हो मैं कर कर जाए सी जो आया जग माए सब जग का जल कुठड़ी तन मन दे सुहाहे घर गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिय सच नाम सिर साहा पात साहो मैं हर नाम न विसरै हर नाम रतन वेसाहो मानमुख भौजल पच मोए गुरमुख तरे अथाहो सिर राग महला पहला घर दूजा मुकाम कर घर बैसना नित चलने की तोख मुकाम ता पर जानिए जा रहने चलोक दुनिया कैस मुकामे कर सिदक करनी खर्च बादो लाग रहो न मेरा जोगी ता आसन कर बह मुला बह मुकाम पंडित बखाने पोथिया सिद्ध बह देव स्थान सुर सिद्ध गण गंधर्व मुंजन शेख पीर सलार दर कुछ कुचा कर गए अबरे पिचलनहार सुल्तान खान मलुक उमरे गए कर कुछ कड़ी मोहित की चलना दिल समझ

सदा सुहाग सुहागणी जे चले सतगुर पाए सदा फिर में चल पाए ना ओ मर न जाए सब मिली ना बिछड़ाए फिर कह समाए हर निर्मल अत उजला गुर बिन गुर पाया न जाए पाठ पढ़े न बुझे भेखी परम भुलाए गुरमती हर सद पाया रसना हर रस समाए माया मोह चुकाया गुरमती सह सुभाए बिन सदा जग दुखिया फिरे मन मुखा नो गई खाए सदा नाम ते आईए सदे सच समाए माया भूले सिद्ध फिरे समाध न लगे सुभाए तीने लो व्याप्त है अधिक रही लपटाए बिन गुरमुख न पाईए न दुबदा माया जाए माया किसनो आखिया क्या माया कर्म कमाए दुख सुख जियो बधाए हो मैं कर्म कमाए बिन शब्द भरम न चूके ना विचो हो मैं जाए बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द थाए न पाए शब्द हो मैं मारिए माया का भ्रम जाए नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सही सुभाए बिन गुर गुण न जापने बिन गुण भगत न होए भगत विचल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्द हर सलाई है कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा माया मोह मेरा प्रभ की ना पे परम भुलाए मन मुख कर्म करे नहीं बूझे बिरथा जन्म गवाए गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसै मन आए मन रे नाम जपहो सुख हुए गुरपुरा सलाई है सहज मिला प्रभ सोए रहा भ्रम गया पो भाग्या हर चरणी चितलाए गुरमुख सब कमाई है हर वसै मन आए कर महल सच समाई है चरणी कर महल सच समाई है जमकाल न सकै खाए नामा चिबा कबीर चुलाहा पूरे गुर ते गत पाई ब्रह्म के बेते सब पछाण हो मैं जात गवाई सुर न तिन की बाणी गावै कोई न मिटै पाई वै तपुत कर्म धर्म के संयम ना पड़े दूजा भाव न जाना सगो भेटिया निर्मल होवा नाम वखाना है एको पड़ा एको ना बूझे दूजा अवर न जाना है खाट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पुलाए सगो सेवा तांगत मित पावे हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी से उचित लागे आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद बखाना है बिन गुर परम पुलाए लक्ष राशि फेर पया बिन शब्द मुक्त न पाए जा नौ चेत तांगत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत मह नाम हर उपजाए जा सतगुर मिले सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सद बलिहारी गुरी अपने मिटो जे हर से ती चित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से ती रंग राता प्रभ निकट वसै सपना घट अंतर गुरमुख विरलाय जाता नानक नाम मिले वड्याई गुर कै शब्द पिछाता श्री राग महला तीजा सहजनो सब लोचदी बिन गुर पाया न जाए पड़ पड़ पंडित ज्योति थके भेखी परम पुलाए गुर भेटे सहज पाया।

सहज गाव्यथाय पवाय बिन सब सहज कथनी बाद सहज ही भक्त उपजय सहज प्यार बैराग सहज ही ते सुख शांत होए बिन सहज जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाध लगाए सहज ही गुण उचरा भगत करे लिवलाए सबदे ही हर मन सह रसना रस खाए सहजे काल विडारिया सच सज सरनाई पाए सहजे हर नाम मन वस्या सच्ची कर कमाए सेवट भागी जनी पाया सहजे रह समाए माया विच सहज न उपजै माया दूजे पाए मन मुकर्म कमाउणे होमै जलै जलाए जमण मरण चूकई फिर आवै जाए त्रिहो गुणा विच सहज न पाई है त्रै गुण भरम भुलाए पढ़िया गुणिया क्या कथी है जा मुंडा कुथा जाए चौथे पद में सहज है गुरमुख पलै पाए निर्गुण नाम निदान है सहज सो जी होए गुणवंती सलाया सच्चे सच्ची सोए भुलिया सहज मिलाए सी सब मिलावा होए मिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार सहज ही सो जी पई सच्चे सज अपार आपे बख्श मिलाइन पूरे गुर करतार सहज अदिष्ट पछाणिया निरपौ ज्योत निरंकार सबना जिया का एक दाता ज्योति ज्योत मिलावनहार पूरा सिलसिलाई है जिसका अंत न पारावार ज्ञानिया का धन नाम है सहज करे व्यापार अंधे लाहा हर नाम लेना खुट परे भंडार नानक तोट न आवई दिए देवनहार सिराग महला तीजा सात गुर मिलिया फिर ना पवै जन्म मरण दुख जाए पूरा सब सब सोजी होई हर नाम मेरा समाए मन मेरे सतगुर से उचित लाए निर्मल नाम सदनवतनु

गुण संयम नाही, जन्म रोगे झूठे तीर्थ वर्ष संयम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत ने सारा, दुद्धा व्यापे दूजा पीजे पैर रैन कै वणजारिया मित्रा, हर हंस उलथड़े आए जो बन घटे जरुआ जिणै वणजारिया मित्रा, आव घटै दिन जाए अंतकाल पुछतासी अंदले, जाजम पकड़ चलाया सब कुछ अपना कर कर राख्या, खिन में भया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाण, कर गया कर अवगुण पछताए, कौ नानक प्राणी तीजै पर प्रभ चेत लिवलाए। चौथे पैर रहन कै वणजारिया मित्रा, बिरद भया तन खीण, अखी अंध न दिसे वणजारिया मित्रा, कन्नी सुनै न वैण, अखी अंधी जीव रस नाही, रहे पराखो ताणा, गुण अंतर नाही क्यों सुख पावै, मन मुखा वण जाना, खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसाया, चलै क्या मान, कौ नानक प्राणी चौथे पैर गुरमुख शब्द पछाण। उड़ के आया तिन साया वणजारिया मित्रा, जर जर वाणा कन एक रत्ती गुण न समाणिया, वणजारिया मित्रा अवगुण खड़सन बन, गुण संजम जावै चोट न आवै, गुण संजम जावै चोट न खावै, ना तिस जमण मरना, काल जाल जम जोय न सकै, पाए भगत पै तरना, पत सेती जावै सही समावै, सगले दुख मिटावै, कौ नानक प्राणी गुरमुख छूटै, साचे ते पत पावै। श्री राग महला चौथा। पहले पैरे रैन कै वणजारिया मित्रा, हर पाया उदर मंझार, हर त्यावै हर उचरै वणजारिया मित्रा, हर हर नाम समार, हर हर नाम जपे आराधे विच अग्नि, हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा, सरसे मां पिता मात थीविया, जिसकी वस तिस चेतो प्राणी, कर हिरदय गुरमुख विचार, कौ नानक प्राणी पहले पैर हर जपिया कृपा तार। दूजे पैर रैन कै वणजारिया मित्रा, मन लागा दूजे पाए, मेरा कृपा दिए वणजारिया मित्रा, ले मात पिता गल लाए, लावै मात पिता सदा गल सेती, मन जाने खट खवाए, जो देवै तिस न जाने, मुड़ा दिते नो लपटाए, कोई गुरमुख

हर पुछिया ढाडी सद कह किस अर्थ तू आया नित देवो दान दयाल प्रभ हर नाम से आया हर दाता हर नाम जपाया नानक पहनाया सुध एक ओंकार सदगुर प्रसाद श्री राग कबीर जीओ का एक सुवान कह घर गावना जननी जान सत बड़ा होता है इतना को ना जाने जे अन दिन जे दिन दिन अवध घटत है मोर मोर कर अधिक लाड धर पेखत ही जमराओ हसै ऐसा तै जग भरम लाया कैसे बूझे जब मोया है माया रहाओ कह कबीर छोड़ बिख्यारा सित संगन ने चौमर नार मैया जप प्राणी अनत जीवन बाणी इन बिद भव सागर तरना जत भावत लागे भाओ परम भुलावा विच जाए उपजे सहज ज्ञान मत जागै गुरप्रसाद अंतर लिव लाग जागै गुरप्रसाद अंतर लिव लागै इस संगत नाही मरना हुकम शान तखस न मिलना रहाओ दूजा श्री राग श्री लोचन का माया मोह मन अगलड़ा प्राणी जरा मरण भव विसर गया कुटम देख बिकसै कमला ज्यो पार कर जो है कपट नरा दूड़ा आए ओहे जमै तना तिन आग लड़ै मैं रह न जाए कोई कोई साजना कहे मिल मेरे बिठला मैं बाहड़ी वलाए मिल मेरे रमैया मैं लह छाए रहाओ अनेक अनेक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पय अमर भया माया मोटा चेत सुनाई जन्म गवायो आलसी बिकम घोर पंथ चालना प्राणी रब सस तह न प्रवेशं माया मोहता बिसर गया जा तजियले संसार आज मेरा मन प्रगट भया है पेखी अले धर्म राओ तह कर दल करना महाबली तिन आग लड़ै मैं रह न जाए जे को मुँह उपदेश करत है तावन त्रिण रतड़ा न रहना जी तू आपे सक जानदा बद त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो काया चर जेख सुनोरे पंडिया आप किस कह न जाई सुनर गंगंधर्व जन मोहे त्रि पवन में खुली लाई राजा राम अनहद की मुरी बाजै जाके दिष्ट नाद लेव लागी जाके दिष्ट नाद लेव लागै रहाओ पाठी गगन सिंह हर चुनिया कन कल सिख पाया तिसमै धार चुवै निर्मल रसमै रसन रसमय रसन चुआया एक जु बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तिम भम एको जोगी कहो कमन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरुषोत्तम कहो कबीर रंग राता है और दुनि सब परम फुलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाणी भक्त बेणी जियो की पहरिया कह घर गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद निर दे नर गर्भ कुंडल जा व्याछत उर ध्यान लेव लागा मृतक पिंड की मृतक पिंड पद मद न अहनस एक अज्ञान सुनागा ते दिन समल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मित्र मंडल आया तो नार हर मनो बिसारिया फिर पछतावेगा मूड़िया सह कमन कुमत भ्रम लागा चेत राम ना ही जम पुर जाएगा जम बिचरे अनुराधा रहा बाल विनोद चिन्ह रस लागा किन किन मोबिया पैर रस में समेत अमृत बिक चाखी तो पंच प्रगट संता पै जापता संजय छोड़ सुकृत मत राम नाम नारा दया उछया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रे मुख जो है सारे अपसर न पछाणिया उन मत काम महाबिक भूल पाप न पछाणिया सुत संपत देखे मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म विगोया पुंडर केस कुसुम ते तौले सप्त पताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण अवगत बाण छोड़ मृत मंडल काओ पाछ पछताना निकुटी देह देख तो नि उपजय मान करत नहीं बुझय लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझय थाका तेज उड्या मन पंखी घर आंगन ना सुखाई बेणी कहे सुनरे भगतो मरण मुकत जन पाई सिराग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जो पै हम न पाप करंता है अनंता पतत पावन नाम कैसे हुनता रहा तुम जू